सहारे के सहारे बाबा श्याम, जिनकी महिमा पूरी दुनिया जानती है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। और जो लोग भी खाटू धाम में खाटू नरेश का दर्शन करने जाते हैं, वो बाबा का अद्भुत सुंदर रूप देखकर खुशी से झूम उठते हैं। बाबा का मन मोहने वाला रूप बड़ा ही सुंदर लगता है।

मतलब की अब यारी है, किस पे भरोसा करें यहाँ पर, झूठी दुनियादारी है। दुनिया के लगभग रिश्ते मतलब से ही बनते हैं, लोग यहाँ एक दूसरे को बस जरूरत पर ही याद करते हैं, मगर खाटू नरेश बाबा श्याम, जिनको जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, बाबा श्याम

बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम की इस खास बात को जानते हैं कि बाबा को मनाने के लिए, बाबा की कृपा पाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उन्हें तो बस सच्चे हृदय से पुकारो, वो आपके हो जाते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि भाव के भूखे हैं मेरे खाटू।

दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा बाबा श्याम होते हैं। और वो कहते हैं ना कि अच्छी संगत में कोयला भी हीरा बन जाता है। और बाबा की संगत में जो भी रहते हैं उनका असंभव काम भी संभव हो जाता है। सूखी बगिया में भी बाबा फूल खिलाते हैं।

अपने भक्तों को बाबा श्याम किसी भी तरह की कमी नहीं होने देते हैं। बाबा श्याम की कृपा हो जाए तो रंग भी राजा बन जाता है, विपन्नता से संपन्नता आ जाती है। बाबा श्याम के भक्त सच्चे हृदय से बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और कृपावान बाबा अपने भक्तों की झोलियां

खाटू नरेश के संगत में जो भी रहते हैं, उनकी भक्ति में जो भी रहते हैं, उनकी पूजा में जो भी रहते हैं, वो हमेशा ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भी श्याम नाम की ज्योति जलती है, खाटू नरेश की कृपा उस घर पर बरसती रहती है। खाटू वाले की भक्त और उनका परिवार हमेशा खुश और संपन्न।

0: जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है।
1: राजा ठीक

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन, शहर का नया मैजिक, रेडियो DS89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS89.6।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गंगापुर सिटी। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान फिलहाल 35 डिग्री सेल्सियस के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि आप 11 बजे बाद घर से ना निकले और छायादार वृक्षों के नीचे अपना समय व्यतीत करें, अधिक पानी पिए और भरपूर मात्रा में ताजा फलों का सेवन करें। दोस्तों चलते हैं और कार्यक्रम का करते हैं शुभारंभ। आपका मन पसंद फेवरेट हल्लू फरमाइश।

आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: आसाराम दागा सर नाम।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आसाराम जी?
1: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला।
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आंखों में बसे हो तुम भजन है सर।
0: सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये भजन।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
0: आपको, आपके परिवार जन एवं समस्त श्रोता गणों सभी को नमस्कार सर। गाना बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: पिक्चर का नाम है जीना तेरी गली में, गीत के बोल है जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी भी ये बेहतरीन।

0: मोहित जी कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: प्यार ने कर दी दागदगी।
0: हाँ सर,
1: प्यार ना करिए।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, जिला विदिशा नगरी से।
1: विदिशा नगरी उत्तर प्रदेश?
0: मध्य प्रदेश।
1: मध्य प्रदेश, सॉरी। हारून जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
0: फिल्म का नाम है अजीब दास्तान है ये का।
1: गाना बताएं।
0: तेरा प्यार है क्या, कुमार सानू अलकायाग में की आवाज।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मैं पीसी देशमुख बोल रहा हूँ सर, उनसे का बुजुर्ग तालुका हदगढ़ जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से।
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से, बताएं सर कैसे हैं आप?
0: बस बहुत बढ़िया है सर, अभी तो।
1: बताएं सर, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: आज फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी
1: जी,
0: और उसका नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: मैं विजय पांडे, थाना पछोड़वा, जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया आपने मेरे कॉल को तस्लीम की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर, दोबारा रिपीट करेंगे?
1: मैं थाना पछोड़वा, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: उत्तर प्रदेश से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: मैं दो लाइन कहना चाहूँगा।
0: जी बिल्कुल, बताएं सर।
1: जिंदगी क्या है जिसकी चाह नहीं है, वो मंजिल ही कैसी है जिसकी राह नहीं।
0: क्या बात है सर, बताएं सर। तो आपकी
1: फिल्म का नाम है सौतन, गीत के बोल है जिंदगी प्यार का गीत है।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद आपको।

0: मेरा नाम है प्रियांश मीना।
1: प्रियांश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: जी मैं मलाना डूंगर माना जी से बात कर रहा हूँ।
1: प्रियांश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी मैं अभी नया जो गाना आया है खासियत वो सुनना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं प्रियांश जी आपको, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना रेडियो बेस में कुल

0: हेलो
1: हेलो पार्क रेडियो जी
0: जी
1: सतश्रीकाल जी
0: सतश्रीकाल सर, नाम बताएं आपका।
1: सर मैं बोल रहा हूँ बूटा सिंह मान, नत रोड तलवंडी साबो, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब।
0: पंजाब से बताएं आप बूटा सिंह जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पर?
1: सर आज मैंने सुना दो संगम फिल्म का गाना है डबली वाले डबली बजा।
0: डबली वाले डबली बजा
1: जी। जी सर
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो में कॉल किया, धन्यवाद।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो
5: जी, नाम बताए सर।
4: हाँ, मेरा नाम मोहनलाल प्रजापत, जिला बालोतरा राजस्थान।
5: जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: हाँ, फिल्म का नाम है अपना देश। लता जी की आवाज है।
5: गाना बताएं फिर।
4: हाँ, गाना है गजरा लगा के गजरा सजा के।
5: बिल्कुल सुना रहा हूँ मोहनलाल जी, आपकी फरमाइश से बेहतरीन का गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
6: गजरा लगा के गजरा सजा के

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते नमस्ते नाम बताएं। नमस्ते गुलशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लोकल सिटी।
0: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सर हमें आज वो वाला गाना सुना दो, श्री देवी का मैं हूँ चश्मे की शौकीन।
0: मैं हूँ
1: चश्मे की शौकीन।
0: चश्मे की शौकीन सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी नुमाइश का एक गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ही गाना। हेलो हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: लोको कॉलोनी से गोलू का।
1: गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
2: जी मेरा नाम सोहेल सैफी।
1: सोहेल सैफी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: सबके लिए बिछड़े हुए आज कहाँ आकर मिले।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: हाँ सर, राम राम।
0: राम राम सा, नाम बताएं आपका।
1: गुजर बोल रहा हूँ, बाला खेड़ा से।
0: गुजर बाला खेड़ा से बताएं गुजर जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जिस दिन जमानत पे बह रहा हूँ मेरे पिस्टन तो नंगा तेरा लहंगा ले आऊंगा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश कर रही। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम अय्यूब सलमानी।
0: अय्यूब सलमानी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: चूली के रंगापुर सिटी से सर।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: सर आज गाना सुनना चाहते हैं, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:57 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
0: जम्मू।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: बीएस स्कूल से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: आ रहे आ रहे आ रहे।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मेरा नाम आरव मीना है।
1: आरव मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सोनापुर सिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: पल पल।
1: पल पल गाना सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डी

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: सर मेरा नाम अमन मीणा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: नतिया कॉलोनी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मासूम शर्मा के गाने सुना दो कुछ।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: जी कुशी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: करौली।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: बापू तेरा पूती।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: जी नाम बताएं।
1: धीरू भाई ठाकुर।
0: धीरू भाई कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: महू कला।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है वो मेरे पति मेरा देवता है।

0: जी नाम बताएं।
1: गुड मॉर्निंग सर, मैं क्या सुनना चाहूँगा?
0: गुड मॉर्निंग निशा जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: नगाड़ा नगाड़ा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी।

0: रोहित रोहित जी कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? आदर्श
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: दिल पे जख्म खाते।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन।

0: आर्यन गोयल है।
1: हेलो
2: मोनिका।
1: मोनिका जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: रेलवे कॉलोनी।
1: पता है मोनिका जी कौन सा फसल लगा
2: किताब
1: सॉन्ग?

0: नमस्ते जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: सर जी जम्मू से केशव शर्मा जी।
1: केशव शर्मा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर जी आज मुझे सुना दिया रिम झिम की गीत साबन का है, अनजाना फिल्म का गाना है ना ये?
1: जी बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आप।
0: तो साथ में मैडम ऐसी मेरी सुषमा रानी और एक मेरा दोस्त है यूपी से विजय पांडे जी और कुछ युवा से हैं वास्तु भी दर्शन करना।
1: ओके सर सुना रहा हूँ आपको, आपकी बेहतरीन सा गाना रेडियो ने कॉल किया, धन्यवाद।
0: ठीक है।

0: नमस्कार सर, नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: रतन लाल बोल रहा हूँ, मऊकला से।
1: रतन लाल जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: यार सुदामा रे भाई बड़ा के नाम में आया।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी समझ का ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: Just a second. Stop. Good news for DSN Academy and Gangapur

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ नाम बताएं सर।
2: हेलो
1: हाँ नाम बताएं सर।
2: जी जी योगेश जानवरे जगह करा सकते हैं।
1: योगेश जी बताएं, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: दिल लगी है कि हवा तो ताना से।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश है बेहतरीन का गाना रेडियो डीएस।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: जी नाम बताएं।
1: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: कोमल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ना रात हो मैं ना दिन हो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना रेडियो। इसमें कुल क्या

0: बताएं सर आपका
1: गंगा ब्रजमोहन महावर
0: ब्रजमोहन जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ये गाना सुनवा दो तमन्ना का, ये आई मेरे सुनने का।

0: एजी खान निवेदन कर रहा हूँ, रेलवे 40 क्वार्टर मऊ कला से।
1: एजी खान जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पर?
0: यही राजेश खन्ना का ही गाना सुना दीजिए साहब, हमसे क्या भूल हुई ये सजा हमको मिली।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी लगे आप ही सुना दो।

तो वक्त हो चुका है 12:28 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: नाम बताएं।
1: आरती मीना।
0: आरती मीना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं आरती जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आँखों को पानी।

दोस्तों, वक्त हो चुका है 12:37 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, थोड़ी ही देर में मिलते हैं 1 बजे नए तरानों के साथ 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: Just a second, stop. Good news for DS Science Academy and Gangapur.

आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

0: आज तलब है। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:10 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो माफ कीजिए नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीच में बातें करते हैं कुछ गर्मियों के मौसम के बारे में। दोस्तों गर्मियों के मौसम के बारे में, दोस्तों मई और जून के महीने में इस बार सारे रिकॉर्डों से तोड़ दिया है। सुबह की तेज धूप और गर्म हवा, ऊपर से ये बिजली कटौत, लोगों को घर से निकलते समय मुश्किल हो रहा है। ऐसे मौसम में हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बाहर निकलते समय सिर पर ढक्के रखे और दोपहर की तेज धूप से बचिए। दोस्तों इंसान हो चाहे पशु पक्षी परेशान होते हैं, अगर हो सके तो अपने घर की छत पर बाहर एक बर्तन में पानी जरूर रखें और आपकी छोटी सी कोशिश कीजिए, जान बचा सकती है। और हम गर्मियों में कम से कम सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, क्योंकि पेड़ होंगे तभी हमें ठंडी हवा और अच्छे मौसम मिलेगा। दोस्तों आगे बातें करते हैं। धूप की कितनी भी तेज हो, छाए देने वाले पेड़ कभी हार नहीं मानते। दोस्तों गर्मियों के मौसम में हमारा नाम सुनाते हैं कि बचपन ही याद आ जाता है, वो आम के पेड़, कड़ी ठंडी कुल्फी, नानी का घर और पूरे दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती। लेकिन आज की गर्मी पहले जैसी नहीं है, अब धूप इतनी तेज हो जाती है कि वहाँ दोपहर से बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है। इसलिए दोस्तों हम इस मौसम में सेहत का ध्यान रखना चाहिए, वो ठंडी ठंडी चीज़ों का खास सेवन करना चाहिए, पानी समय समय पर पीना चाहिए और अपने बिना काम ही बाहर धूप में नहा जाए। सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:18 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों बातें करें गर्मियों के मौसम में।
1: मैं हूं आपकी अपनी आरजे पलक और आज वैसे जो मई की इस गर्म सुबह में लेकर आई हूं कुछ प्यारी सी हेल्थ टिप्स ताकि आप रहे फिट फ्रेश और खुश। दोस्तों गर्मी का मौसम है इसलिए खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो चलिए सुनते हैं कुछ आसान और काम की बातें। सबसे पहली टिप, पानी खूब पिएं, दिन में बार बार पानी पीते रहें। बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। खान पान हल्का रखें, ज्यादा तला भुना खाने से बचें। दही छाछ खीरा तरबूज ककड़ी और पुदीना जैसी ठंडी चीजें खाएं, ये शरीर को ठंडक देती है। धूप से बचाव करें, दोपहर से 3 बजे के बीच तेज धूप में कम निकलें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो टोपी छाता या गमछा जरूर इस्तेमाल करें। पेड़ पौधों का भी रखें ध्यान, घर के आसपास पौधों को सुबह या शाम पानी दें। पेड़ हमें ठंडी हवा और शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। पूरी नींद लें, मोबाइल देर रात तक देखने के बजाय समय पर सोएं। अच्छी नींद शरीर को ऊर्जा देती है और मन भी खुश रहता है। और सबसे जरूरी, मुस्कुराते रहिए क्योंकि खुश रहने से आधी परेशानियां खुद ही दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी छोटी।

और दोस्तों वक्त हो चुका है 1:21 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
2: 89.6 पे,
0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
2: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
4: Just a second. Stop. Good news for DSN Academy and Gangapur.

आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

तो वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शिमरू के नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर।
3: And number just a second, stop. Good news for Dear Science Academy and Gangapur City and all over India. According to

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111, इसके अलावा 9462744762।
2: सुबह तो चुका है 3:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

वक्त हो चुका है 3:34 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

वक्त हो चुका है 3:46 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे रेडियो।

गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: Just a second, stop. Good news for DSN Academy and Gangavi.

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त अरजी पुरी। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्य

0: हेलो। हाँ जी मैम, क्या कहाँ से बात कर रही? कौन
1: गाने
0: सा गाना सुनना चाहोगी?
1: वाली है यार, तुम भी आओगे?
0: कौन? ओके।

0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मैं शारदा प्रसाद प्रजापति ब्रज रेडियो से होता हूँ, श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ
0: जी। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: फिल्म का नाम जॉन, आई वो काटा।
0: कौन सा सर?
1: आई वो काटा।

रही थी, आराम से मैं छत पे गई, कुछ काम से मैं सीढ़ी पे था, वो चोर खड़ा, दिल के अंदर था शोर।

0: आपका?
1: मेरा नाम है अंजित सलमानी मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: लीगर गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हरियाणा सुनना चाहते हैं, देर ना हो जाए कहीं, देर ना।

0: आज कल रात में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो हेलो
2: हेलो
1: सर, नमस्ते।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: ये नाम क्या है आपका?
1: विनोद कुमार सैनी।
0: कहाँ से बात करे?
1: गंगापुर सिटी मऊकला।
0: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम नशा फिल्म का सॉन्ग है, नजर मिलाई तूने दिल न मिलाया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: जी भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
1: विमल मामा मऊकला गंगापुर सिटी डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर राजस्थान।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फिल्म का नाम है उपकार और गाने के बोल है कस्मे वादे प्यार वफा सब।
0: ओके सर, ओके मामा जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: क्या।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते
2: सर, नाम क्या है आपका?
1: मैं मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, जिला बीकानेर नगरी एमपी से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है तेरा नाम। गाने के बोल हैं ओढ़नी ओढ़ के नाचू।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद आपका।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: अच्छा नमस्ते जी,
0: नाम तो बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर से थी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: तन्हाई में ऐसी होती है जब इश्क कभी हो जाता है।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएफ में कॉल करने के।

0: गुड आफ्टरनून, नाम क्या है आपका?
1: निशा शर्मा, गंगा पसंदी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी आज?
1: मैम स्टार्टिंग मोहब्बत में क्या कोई आशिक बन जाता है दीवाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: बिक्की मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो बिक्की जी?
1: मऊ कला गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म है एक दीवाने की दीवानियत और गाने का टाइटल है दीवानियत।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS89.6 शहर की धुन। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

वक्त हो चुका है 5:18 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है दिल्ली से आरकेएम जी की। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: अच्छा अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे ना ट्यूलिप का फूल दे दो। ट्यून इन कर रखा आपने 99.6 रेडियो डीएस और हिंदुस्तान में। तो भैया, अगर आप पैसे के बदले ट्यूलिप का फूल दोगे तो आपको फिर डिशुक डिशुक डिशुक डिशुक। लेकिन अगर आप हॉलैंड में पैदा हुए होते, लेकिन साल 2024 नहीं, साल 1634 1634 में अगर हॉलैंड में पैदा होते तो शायद ये काम करते, क्योंकि उस साल हॉलैंड में वहां के लोगों ने ट्यूलिप के फूल को नेशनल करेंसी बना लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर अमेजिंग बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

अगर आप इंसान हो और ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो मुझे नहीं पता उससे कोई फायदा हो भी रहा या नहीं, लेकिन अगर आप गाय हो यानी कि मो काओ तो फिर तो फायदा है। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले काओ यानी कि गाय अगर ज्यादा म्यूजिक वो सुनते हैं तो फिर वो ज्यादा दूध देती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को अपने ग्वाले तक पहुंचाओ, क्योंकि वो हर रोज आपको दूध में पानी मिला के दे रहे। बोलो भैया प्लीज पानी मिलाना बंद करो और अपने गाय को म्यूजिक सुनाओ। फिलहाल आप म्यूजिक सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: queen. Hit-a-de-da.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: तेरा रे रा, तेरा रे रा।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन।
2: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
4: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। हिंदी संगीत और सिनेमा को सजाने में बहुत से गायक और संगीतकारों का अहम योगदान रहा है। कुछ सितारों ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि जमाने बदल गए, लेकिन उनका जादू आज भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही एक संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन को लोग आज भी एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को कभी नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने अपनी आवाज और संगीत से खूब नाम कमाया। एसडी बर्मन एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन असल जिंदगी में बेहद सरल जीवन जीते थे। एसडी बर्मन साहब की मां का नाम निर्मला देवी था, जो मणिपुर की राजकुमारी थी, जबकि उनके पिता एक महाराजा के बेटे थे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीष आपके साथ। एसडी बर्मन साहब ने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ कदम रखा। कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद एसडी बर्मन ने 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों में तथा फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: SD बर्मन के किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर थे। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले SD बर्मन को लोग कंजूस भी कहा करते थे। उनसे जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है चप्पल का। दरअसल जब भी SD बर्मन मंदिर जाया करते थे तो उन्हें अपनी चप्पल खोने का डर लगा रहता था, और इससे बचने के लिए वो एक तरकीब निकाला करते थे। SD बर्मन जब भी मंदिर जाते थे तो वो कभी भी दोनों चप्पल एक साथ नहीं उतारते थे। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल शहर में चप्पल चोरी की वारदात बढ़ गई है। तब उनके दोस्त ने पूछा कि अगर चोर ने दोनों चप्पल खोज ली तो क्या होगा। ऐसे में उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, यदि इतनी चप्पलों में से दोनों चप्पल खोज निकालता है तो सच में वो इसका हकदार है। SD बर्मन की और बातें आपके लिए 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एसडी बर्मन ने फिल्म तलाश, बंदनी, अमर प्रेम आदि फिल्मों में भी गानों को अपनी आवाज दी। उनकी प्रमुख फिल्में मिली, अभियान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, बंदनी, सुजाता और टैक्सी ड्राइवर थी। 1969 की फिल्म आराधना में भी एसडी बर्मन का ही संगीत था। इस फिल्म से एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ। वहीं गायक किशोर कुमार के करियर को भी नई ऊंचाई मिली। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

चलो चलो चलो चलो चलो आंखें बंद करो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और अगर गाड़ी चला रहे तो आगे खोलो बंद मत करो। पर एक रिसर्च के मुताबिक 100 लोगों पे ये रिसर्च हुआ और उनसे कहा गया कि आंखें बंद, उसके बाद आंखें बंद करके पट्टी यानी ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उनसे सीधे चलने को कहा गया, तो कोई भी सीधा नहीं चल पाए, थोड़ी देर सीधे चले और उसके बाद वो सर्कल्स यानी गोल गोल घूमने लगे। और उसके बाद पता चला कि जब तक हमारे पास कोई विजुअल पॉइंट ना हो, कहीं फोकस ना हो, हम सीधा नहीं चल सकते। अगली बार अगर दोस्त से आपको शर्त लगाना हो तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना और बोलना कि चल सीधे चल के दिखाओ। सारे पैसे आपकी जेब में। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: कुछ कुछ सुनाएगा नहीं
1: तू कहा ही नहीं।
0: अच्छा जे मैं कहा फिर सुनाएगा।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा